आप दीदी बड़ी अपार बख्शिश के पावी मेहर हुई है। अमृत वेले संगता नु जागण दा बल बख्शा, गुरसिखी वाला जीवन बख्शा है। धन गुरु नानक देव पातशाह जी हो जिन्हां संगतां च हाजरियां भरदियां होईयां गुरु के सिखां ने माई भाई बच्चिया ने गुरु के शब्द नु अपनी कमाई नु सफल करदे होए माया अरदास कराई। गुरु नानक देव जी पातशाह जी हो साध संगत दी माया सफल करनी, गुरसिखी वाला जीवन बख्शना ते अपना मेहर भरिया तरना चे पातशाह दाता जी हो ते धन गुरु कलगीधर पातशाह जी हो जो आप जिन्हें बख्शिश मेहर कीती है शक्ति बख्शी है। सिंह साहब जी हो सरदार हरभजन सिंह दे जोगी साहब दी जो ए गुरसिखी दा बूटा लाया है, आप इसे तरह गुरसिखा नू चढ़दी कला च रखना है। दाता जी हो अपना बख्शिश भरिया मेहर भरिया तरना है, पंथ दे अंग संग साहित्य होना है ते इसे तरह सिंह साहब नू आप बल बख्शना, निम्रता गुरसिखी वाला जीवन ते चढ़दिया कला च रखना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आनंद साहब का पाठ।

पहला नियम है गुरसिख दा कि गुरु की संगत करनी। सत संगत अंदर पहुंचना अमृत वेले इशनान करके, ते जेड़ा सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज अंदर शरण आउन वाला गुरसिख नहीं, जेड़ा अमृत वेले उठ के इशनान नहीं करदा, प्रात काल सतसंग तो बगैर व्यर्थ कर दिंदा, गरीब नवाज कहंदे हन ओह गुरसिख तनखाइया है, ओह गुरसिख गुरसिख नहीं। गरीब नवाज साहब फरमान कर

बस सुनते बात लवे। गोबिंद सिंह वह जमपुर जावे ते गुरसिख अमृत वेले उठिया। अमृत वेले उठ के सतगुरु जी दी हजूरी अंदर पहुंचया ते गुरु की संगत अंदर बह गया। गुरु की संगत विच बैठिया होया सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज दे पावन बचन सुनदा नहीं, बल्कि नालदियां नूं भी नहीं सुनन दिंदा। ते गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ऐसे गुरसिख प्रथियाए लिखदे ने भाई, हर जस सुनते बात चलावै। हरी परमात्मा दी बाणी सुनदिया, हरी परमात्मा दी कथा हो रही होवे, हरी रब परमात्मा दी गुरबाणी दा कीर्तन हो रहा होवे, ते हर जस सुनदिया आपो विच गल्लां करदे रहन। गल्लां बातां करन वाले गुरसिख नूं महाराज कहंदे हन, उसने जन्म व्यर्थ गवाया, सतसंग विच बह के दूजे दा भी समा बर्बाद कीता। ऐसे गुरसिख नूं जमा दी मार पैंदी है, सिद्धा जमपुर जांदा। हर जस सुनते बात चलावै, हर जस सुनते बात चलावै, गोबिंद।

चोरी ठगी यारी दा पैसा कतर कर दें। साहब सचे पातशाह महाराज कहंदे ऐसे गुरसिख दा कदे वसा ना करना, क्योंकि हक पराया नानका ओ सूअर उस गाए, गुर पीर हामा ता भरे जा मुरदार ना खाए। मैं भी ऐसे सिख दी हामी नहीं भरांगा जेड़ा छल फरेब दा धन इकट्ठा करदा ते जेड़ा गुरु नूं दसवंद नहीं देंदा, किरत दस ना हुंदी नहीं करदा। ऐसे गुरसिख दी गवाही सची दरगाह च नहीं हो सकदी।

सात जन्म कुश्ती होए मरे सिख होके सिर ते टोपी धर लैनी टोप लै लेना भाव के पग बन के रख देनी माया वाली पग ला बन के रख देनी काफी दिन तक बन्नी रहनी रोजाना उस नु चुक के सिर ते धर देना। गरीब नु आज कहंदे हाथ किस वास्ते दिते ने जे अपना दस्तारा नहीं सजा सकते। जे अपना दस्तारा अपने हथी रोजाना सजाओ खूबसूरत लगो गुरु के सिखो। इस करके गरीब नु आज कहंदे ओ मेरा सिख नहीं जेड़ा टोपी सिर ते रखदा ओ सत जन्म कोड़ियां दे जन्म दे विच बतीत करदा है। गरीब नु आज कहंदे तैनू हाथ क्यों दिते सी कोड़ा हो जांदा। होए सिख सिर टोपी धरै सात जन्म कुश

एक वाहिगुरु अकाल पुरख महाराज दे दिते होए मंत्र तो बगैर दूजा मंत्र जपन वाला गरीब नवाज कहंदे मेरा सिख नहीं। भाई नंद लाल ए मर्यादा लिखी जाओ नाल नाल जिहड़े मैं वचन कह रहा ते इन्हां दे अंदर कोई तब्दीली ना आवे। जो मेरे मुंह चो निकल रहे ने हूबहू उसे तरह लिखे जान बल्कि प्रोड़ता करके लिखे जान ते वाधू चंगी गल है। क्योंकि सिख ए ना कहे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे निकले हुए मुंह चो वाग शायद समय दे गुरसिखा ने फर्क पा दिता।

रोजाना दा उचारण वाहगुरु होवे, अठे पैर कम ते भी वाहगुरु वाहगुरु करदा रवे, दुकान ते बैठा वाहगुरु करे, घर विच बैठा वाहगुरु करे, रसना दे उपर वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु दा टिका होवे, ते वाहगुरु नू हिरदे अंदर वसा लवे। ऐसा वाहगुरु हिरदे च वसे भई वाहगुरु का खालसा अगो आउंदा होया दीदार दे देवे, भई गुरु का सिख आ रहा है ओनू मिलन वास्ते अगा फतेह बुलाउन वास्ते जावे, जाके सामने गुरसिख दे दर्शन करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुला के गुरसिख दा हाल पुछ। ए ना होवे भई गुरसिख नू वेख के राह ही छड़ जावे ते फतेह ते अलग रह गई। अज दे समय दे अंदर गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत करदा है। गरीब नवाज सचे पातशाह ने आने वाले समय नू वेख्या, इस करके ए पूरने पा दिते, गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत नहीं करेगा बल्कि

जुआ असत झूठ बोलना, चोरी करनी, मदरा शराब पीनी, नशियां दा सेवन करना। गुरु का सिख निज नारी के संग अपना जीवन बतीत करेगा, पर नारी दा सुपना भी इसकी जिंदगी अंदर नहीं आएगा। जुआ कदे नहीं खेडेगा, क्लबां दे अंदर जा जाके जुए खेलने, घरां दे अंदर बह के ताशां खेडनियां, कार खेडने, गुरु के सिख नूं मनाही है। पर नारी इहदा सेवन ना करना, जुआ ना खेडना, असत झूठ ना बोलना, चोरी ना करनी, मदरा शराब नशे आदक दी वरतों ना करनी। गरीब नवाज कहंदे ए पंज ऐब ने जगत दे, ए सिंह तज जावे ओ जवान गिनिया जाएगा, ओही असली मेरा जवान होएगा। गरीब नवाज फरमान कर देने पर नारी जू

एक प्रदान अवर ना पाल जल है। पहली रात ए है वे खंडे की पहुल शके जिथे पांच प्यारे नजर आवन अमर संचार दा पता लगे अपने जीवन नु गुरु के लेखे ला देवे खंडे की पहुल शक के अपना जीवन

मेरो दर्शन नहीं ते पापी त्यागे देख। वो ते अपने आप नु सिख ना मनन जिन्होंने केस मनाए हुए ने, मेरे तो सिख वह भी नहीं जिन्होंने अमृत नहीं छकिया, जिन्होंने पाहुल नहीं लई ते केवल केस धारण किए हुए ने, ते सबना मोहरे आके बहन का दावा करते ने। उची उची आवाज गुरु महाराज की दिती हुई बाणी का याप जाप करते ने पर आप पगाते नहीं, केस रखे हुए ने, पाहुल नहीं छकी हुई, खंडे बाटे का अमृत नहीं छकिया होया, वह भी मेरे सिख नहीं। ते जेड़े सहजधारी ने जेड़े अपने आप नूं कहाउंदे ने भी केस मना के भी गुरु के सिखां सिखी अंदर है, वह मेरे सिख किवें हो सकते ने। साहिब गरीब नूं आज सच्चे पातशाह महाराज ने पवित्र वाक भाई नंद लाल नूं सारे दे सारे दिते। भाई नंद लाल ने यह वाक गरीब नूं आज सच्चे पातशाह जी महाराज दे लिख ले। संकल्प किया गरीब नूं आज समयां दा समां बतीत हो जाएगा कि यह रहत मर्यादा सिखां दे अंदर ज्यों दी त्यों चलेगी। यह गरीब नूं आज कहन लगे नहीं, मेरे सिख मेरा खालसा राज दे अंदर आके भटक जाएगा, ते जदों ए भटकेगा खुआर हो जाएगा, दिन ब दिन खुआर हुंदा चला जाएगा, दिन ब दिन खुआर हुंदा चला जाएगा, क्योंकि इसनू राज पाउंदा नहीं। ते जदों इसने राज

राग भीम पलासी, दो राग ए आपस विच बहुत मिलदे ने, धनासरी ते भीम पलासी इको ही सुरां ने इन्हां दियां। सिर्फ केड़ी सुर ते ठहरना है भीम पलासी विच ते धनासरी विच, केड़ी सुर ते इहदा ठहराव है, ठहराव करके ही इस दे राग दा रूप बदल जांदा है। भीम पलासी विच मध्यम ते ज्यादा ठहरना पैंदा है ते धनासरी विच पंचम ते, ते शब्द भी धनासरी राग दा है। जी की एक ही पैमानी अवर जतन कर रहे बो तेरे, तिन तिल नहीं कीमत जानी। तीन ताल विच इस दी बंदश है, अति सुंदर बहुत। सो आप जी श्रवण करो।

काल जमदूत वे पुत नारायण बोले छहया अंत काल जमदूत वे पुत नारायण बोले छहया जम

कबीर मानस जंदुला बहे होतना बारंबार जो बंथल पाके पोंगिरे बोरना लागेगा।

तब एक मानस देही पाई, मानस जन्म अमोलक पायो, वृथा काहे गवाओ, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब एक मानस देही पाई, इस देह को सिवरे देव पजो गोविंद भूल मत जाओ, पजो गोविंद भूल मत जाओ, मन चमका ही लाओ।

जब लग बिकल पाई नहीं बारी पज लै रे मन सारे पानी अब ना पजस पजस कब पाई आवे अंत ना पजिया जाए ए तेरे अवसर ए तेरी बार ए तेरे अवसर ए तेरे

या भीतर जो राम बस है साचो ताए पछानो पई प्राप्त मान देवरिया गोविंद मिलन की ए तरी बरिया।

गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन किए निरार्थ दाम। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरार्थ दाम। फिरत बोते जुगहारे हो, फिरत बोते

कैसे फिटे, गुरु बाबे फिट कैसे फिटे, गुर अंगद कीते कूड़े, गुर तीजी पीढ़ी विचारिया, क्या हठ के ना विचारे, गुर चौथी

हमारी जेहबा एक प्रभु हर के गुण अगम अथाह। हम क्यों कर जपे आणिया हर तुम वड अगम अगाह।

हमारी जेबा एक प्रभु जेबा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाहे जेबा एक कवन गुण कहिए तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने कवन गुण कहिए जेबा एक तू समरथ वडा मेरी मत थोरी राम मेरी मत थोरी राम हम अज्ञान अल्प मत थोरी मत थोरी तू समरथ वडा वड्डी हूं।

जन नानक को हर बख्श रे हो, जन नानक को हर बख्श रे हो। हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे इयानिया हर तुम वड अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पाह, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संगत रहा। जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुठे मेल मिला हर कृपा।

0: सुनेन दी सुनेन दी बेन दी हर कृपा कर
1: हम पापी किरम तरा पापी किरम तरा हम पापी किरम तरा।

बड़ी गंभीर प्रकृति का राग है। विदक दी आत्मा कृपा दी जाचना करती है, आपे दी खोज करती है। इसलिए इस राग विच गुरु साहबान ने मन, मत, बुद्धि, आत्मा, मौत, मुक्ति आदि गंभीर विषयां विच गुरबाणी उच्चारण की। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच सब तो वध बाणी इसे ही राग विच है। सुखमनी साहिब अते बावन अखरी जीवन दे सारे ही मतां दा तत दर्शाउंदियां हन। भगत कबीर जी दी सब तो वध बाणी इसे राग विच है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा फरमान है, गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे, पाणे चले सतगुरु कै ऐसा सिगार करे। गौड़ी दियां 12 वनगियां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच हन। जो दो शब्द हुण आप सरवण करोगे उन्हां विच गौड़ी दे जो सुर लगाए गए हन वह हन ऋषव अते दैवत कोमल अते बाकी सारे शुद्ध स्वर। गायन समा राग दा प्रथम पहर। पहला शब्द सरवण करो भाई गुरदेव सिंह खालसा जी पासों। शब्द दे बोल हन, गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे। दूजा शब्द है प्रोफेसर हरचंद सिंह जी दा गाया होया। बोल हन, थिर कर बैसहु हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। पहला शब्द गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे।

ब्राह्मणी गुरमुख सुहाग गुरमुख उजल हंस है मनमुख है काग मनमुख उदे कमल है गुरमुख सो जाग मनमुख जोन

0: वायन के रूप होए प्रगटिया,
1: वायन के रूप होए प्रगटिया।
0: तो आप केड़े केड़े रूपा जाए ने, वायन के रूप अनेका रूप आ जाए गुरु दस महाराज। सत युग तय माने चलियो बल ब्राह्मण पायो, मायन के रूप हो प्रगटिया, मावा भोगिंद सिंह वायन के रूप। सत युग तय मानियो चलियो बल ब्राह्मण पायो, त्रेता तय मानियो राम रघुवंश कहायो, वायन के रूप हो प्रगटिया, वायन के रूप।

0: कहूं महाराजन से छिन छेत लेत हो, कहूं बेदरीत कहूं तस विपरीत कहूं तिरगुण अतीत कहूं सरगुण समेत हो।
1: ते गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज दा अज एक होर स्वरूप, क्योंकि अकाल पुरख दे कई रूप ने ते उस दे रूप कथन नहीं कीते जा सकते। कतों ते सचेत रूप होके चेतन अवस्था विच तुरिया फिरदा, कतों अचेत होके सुत्ता पिया, किते भिखारी बन के भीख मंगदा फिरदा, ते किते महादानी होके दान करदा फिरदा, कहूं महाराजियां नूं दान देंदा फिरदा, ते कहूं वड्डे वड्डे छत्रपति महाराजियां कोलों धरती खोह लैंदा, किते ओ वेद दा रूप बन जांदा, किते ओ तिन्ना गुणा दा रूप बन जांदा, किते ओ सर्व गुणा दा सपन्न वाहिगुरु मालिक होके ते संसार दे अंदर नजर आउंदा। ओ अकाल पुरख दा रूप अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे स्वरूप जो आप जी पास कल दे पहुंच चुके ने, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पवित्र स्वरूप जेडे जागदी रूप जागदी जोत है, ओ अज श्री गुरु गुरुद्वारा साहब जी दे अंदर श्री गुरु नानक सतसंग साहब विखे सुशोभित हैं। उन्हां स्वरूपां नूं आपां सचखंड विखे लैके जाना जो महाराज साहब जी दा अतल अस्थान है, उत्थे विराजमान कराउणा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सिखां दे गुरु नहीं बल्कि सारे संसार दे सांझे गुरु हन। सारे संसार दी बाणी सारे संसार दा भरम दूर कीता गुरु ग्रंथ साहिब अंदर सच दे नाल जोड़िया है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने, ते सच दी आवाज नूं हमेशा बुलंद कीता। इस दे विचों केवल सच ही सच लभेगा, संसार दे पदार्थ मिले लभणगे।